Michi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Yaadein kabhi purani nahi hoti. सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है, इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा।
3: Number 20.

0: Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा और नंबर 17 दिस इज मस्कारा.
1: नंबर 17 किस्म

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
1: Number 16.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. ये था मैं और तू by Jasmine Sanilas. And I don't know अगर धुरंधर एक सच्ची कहानी है या it's fiction. But Bollywood filmmakers को सच्ची कहानियाँ पसंद बड़ी हैं. Which is why we love our biopics. And एक और biopic देखने के लिए अब जनता उत्सुक है. सौरव गांगुली की biopic दादा. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं. क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं, वक्त मांगती है. सिर्फ एक MS धोनी की बायोपिक थी विच वर्क्ड फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83, अजहर, नॉट सो मच. नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 15.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14.

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोमकॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: एक लड़का, एक लड़की, थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ी सी दूरियां, और हम दो घंटे उनके साथ जी लेते थे।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही।
0: फिर गीत आई और अचानक पूरे देश को लगा यार काश जिंदगी में कोई गीत मिल जाती है।

0: एंड देन यू हैड बनी और नैना। हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं। उसके बाद पता ही नहीं चला रोम कॉम्स कहाँ खो गए। फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया। रोम कॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस। और फिल्में शायद बुरी हों बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है, लाइक अ हंसी तो फंसी। पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट, लेकिन मुझे वेल आई फेल इन लव विद अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग। आज वी रिवाइंड दिस सॉन्ग बाय सनम पुरी।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 12.

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी। इस धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी, क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव। और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन होते हैं, एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं। अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है। और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूं उतना पहुंचना चाहता हूं। बाकी फैसला आप कीजिए, फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था। अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हां, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है। दे बैडली नीड अ रीसेट। नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म, बेबी डू डाई डू। आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट। और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क अमीना 2.0 से। कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है।
1: नंबर 11, कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Suren ke saath only on Mirchi, it's hot. Number 10.

0: बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर।
1: नंबर 9
0: लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वॉन्टेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान, एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैंस सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में। दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन।
2: पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। Only on Mirchi. It's hot. Number 8.

पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद हैं आपको। सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट। अब से एक महीने बाद वी ऑल विल बी सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स एवर।

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।
1: वे

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक इज द सेम टीम दैट इज गिविंग अस वे जुनून इन आवारापन 2, इमरान हाशमी और उनके साथ इस गाने के कंपोजर मिथुन. और इसी कॉम्बो ने एक और गाने में जादू बिखेरा था, जब कई बार दिल टूटने के बावजूद फिर मोहब्बत करने चलता है. Special

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 3।

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramlila in 2013. Yeah. There was Dil Dharakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility, and it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। It's time to end this episode of the Mirchi Top 20, but फिर मिलूंगा। In fact, मैं भी वापस आऊंगा। So until the next time, Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. 98.3 Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

Mitchie. It's hot.

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर ओन दिखा विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची। तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है।

बैक वंस अगेन। फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची। सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट।

रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे. आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

यू नो हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब में।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. Honestly, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लीपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on your host for the night on Club Mirchi.

ब्राइड और मूड फुल सनशाइन। बारिश को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसको बैकग्राउंड इफेक्ट बना दो। क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे विचार एंड मिर्ची और योंतिका।

अगेन क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योंटिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर।

कहीं शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।

0: हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर टिकट टुगेदर बेबी।
1: एक सफर है तू हमारा।

एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

0: Mirchi. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

व्हिसल बज चुका है, बीट्स वार्म अप कर चुके हैं और अब सिर्फ एक काम बाकी है, डांस लाइक नोबडीज वॉचिंग क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देखा।

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टुगेदर।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वॉज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

बैक वंस अगेन। फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची। सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, favorite people और loud music. Honestly, इससे better weekend combo exist ही नहीं करता. तो shoes पहन लो या slippers, बस groove करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Ayon Thika, your host for the night on Club Mirchi.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो
0: ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ऑयंतिका एंड डीजे रिचर्ड ओनली ऑन

क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑयोंतिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज हियर।

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

नशा नशा तेरी अखों।

मिर्ची और यौनतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाय टू मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स। नाम की स्पेलिंग है AYANTIKA। रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स कनेक्ट। दिस इज क्लब मिर्ची।

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टुगेदर।

ngày cùng đi khó như chưa bao giờ.

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

Jack, get up, John, and some Jack, get up, John, and some Jack, get up.

जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

वेलकम बैक. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, योर होस्ट फॉर द नाइट ऑन क्लब मिर्ची.

फैन क्लब मिर्च में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली। मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड। आई एम योर होस्ट मिर्ची और योंटिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

तेरा नशा नशा तेरी।

योंतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाई टू बी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल्स. नाम की स्पेलिंग है AYANTIK. रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं. लेट्स कनेक्ट. दिस इज क्लब मिर्ची.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योन टुगेदर।

आए कोई खा।

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंदिका।

sab jaa karo jaan sab jaa karo jaan sab jaa karo।

व्हिसल बज चुका है, बीट्स वार्म अप कर चुके हैं और अब सिर्फ एक काम बाकी है, डांस लाइक नोबडीज वॉचिंग क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका।

पार्टी जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

साथ है। आज रात है।

0: Imichi, it's hot.
1: Do tole ki mandri la de, kin tole ka kangna.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
4: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे दिन, आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
2: शो
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला, क्या था बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कल भी आज भी
1: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम यू नो वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय, इट ऑल टाइम्स, देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है, ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था, सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी यू नो स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस, यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को। और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान हैं, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर, मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड,
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
1: द देवदत्त पटनायक शो। हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूँ, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूँ तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। आप मुझे बांध के लाए हो यहाँ पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूँ। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल, अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूँ, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं, सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है, और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे ये सो एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। तो स्टे ट्यून्ड,
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
3: द देवदत्त पटनायक शो।
4: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
0: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
0: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: गांव गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है। सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
1: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में इसे मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं। सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसके लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बोथ गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग। लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफ कोर्स देयर आर स्टोरीज कि उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं। लेकिन क्रियाओं के तरफ, फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है। That is the purpose. All
3: right. Thank you so much for the answer. Thank you.
1: Welcome, Akshata. Yeah. तो अक्षता का question was about सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है, ये traditional color है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। Normally जो male gods होते हैं उनको लाल रंग very rarely दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो prosperity लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
0: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं. तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू. नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे. लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं और एक ही सर वानर का रूप लेता है. बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है और एक गरुड़ का होता है. पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है. अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपियर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम. तो स्टोरी है हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक. इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है. वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं. उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं. ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना. सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन. जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं. ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं. आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस. So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं, हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. कब और क्यों? बताएंगे देवदत्त.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन, योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काईज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने, कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचे की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाति। सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

लगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। भीरू यह शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है, जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot.
1: Uh-huh.

0: बैठे ना मुझे मेरी जिंदगी की बनाई गई पहली कॉफी बड़ी जोरों से याद आ रही है। वेल एक्चुअली वो कॉफी कॉफी नहीं थी, वो कॉफी तो एक्चुअली एक कॉमेडी शो बन गई थी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. And हुआ ये था बॉस कि मैं ये कॉफी बना रही थी अपनी एक कजिन के लिए जो कि अमेरिका से आई थी। अब घर में छोटे होने का ये नुकसान तो होता ही है ना कि सारा काम आप ही को दे दिया जाता है। तो जब उन्होंने डिमांड की कि मुझे कॉफी पीने का दिल है, तो बोल दिया गया कि सारा तुम जाओ, तुम कॉफी बनाकर लेकर आ जाना। मैंने कहा यार मुझे तो कॉफी बनानी आती नहीं है, आई हैव नेवर मेड अ कॉफी। तो एवरीबडी टोल्ड मी कि देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो काम करने की आदत थी, मैं चली गई कॉफी बनाने के लिए। और मैंने कॉफी बिल्कुल मम्मा के स्वाद अनुसार बनाई। जो कॉफी मम्मा हमारे लिए बना के दिया करती थी ना, वही कॉफी वैसी की वैसी कट कॉपी पेस्ट मैंने अपनी कजन के लिए भी बना दी। रिमेम्बर शी इज एन अमेरिकन कजन जो ब्लैक कॉफी पीने की आदि हुआ करती थी, उनके लिए मैंने दूध कॉफी बनाई थी। और कैसी वाली, वो जो चुटकी भर कॉफी डाला करती थी ना मम्मा हमारे लिए जब भी कॉफी बनाती थी, बिकॉज ये कॉफी तो बेबीज कॉफी थी ना, वैसी ही कॉफी मैंने अपनी कजन के लिए भी बनाई थी। और उन्होंने जैसे ही पहला सिप लिया और जो पेट पकड़ पकड़ के वो हंसी है, आज तक मेरी वो कॉफी ना एज अ जोक याद की जाती है। और आज तक जब भी हम सारे कजन इकट्ठा होते हैं ना, तो इस कॉफी के जिक्र के बिना हमारा इकट्ठा होना पूरा ही नहीं होता है। बट दिस ऑल्सो मेक्स मी थिंक अबाउट द फैक्ट कि कितने मासूम थे यार हम। एक चुटकी भर कॉफी जो हमारे दूध के अंदर डाल दी जाती थी, हम उसे समझते थे कि यही रियल कॉफी है। अब जब रियल वर्ल्ड में ब्लैक कॉफी पीने लग गए ना, तो समझ में आ रहा है कि यार ब्लैक कॉफी इज द रियल कॉफी, नॉट दैट चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी। बट हाँ एक बात तो जरूर है, वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली जो कॉफी हुआ करती थी ना, बड़ी स्वाद हुआ करती थी, क्योंकि उस चुटकी भर कॉफी पाउडर के साथ हमारी चुटकी भर उम्र हुआ करती थी और चुटकी भर जिम्मेदारियां भी हुआ करती थी। ज्यादा से ज्यादा बैग पैक कर लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना और सुबह टाइम पर उठ जाना, घर आकर यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, और क्या ही जिम्मेदारी हुआ करती थी यार हमारी। लेकिन आज जो हम ब्लैक कॉफी पीने लग गए हैं, अडल्टिंग के फेज में आ गए हैं, इस उम्र में आने के बाद समझ में आ रहा है कि यार वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाले जमाने ही ज्यादा अच्छे थे। ये बड़ों वाली कॉफी पीने का क्या ही शौक चढ़ा यार जिंदगी को भी। वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, पता ही ना होता बड़े होने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो कितना अच्छा होता, छोटे ही रह जाते और वो चुटकी भर कॉफी पाउडर वाली कॉफी से ही काम चलाते, नहीं क्या। चलो जी, नाउ विद दिस मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 Mirchi. It's hot. Sara zamana,
1: Sara ka diwana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
2: अगर मैं आपसे बोलूं कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म का एक आइकॉनिक डायलॉग है जो हम आज तक अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं एंड इट हैज आल्सो टर्न इनटू अ मीम, तो कौन सा डायलॉग होगा वो?
1: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
2: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड आज मिड डे मोहब्बत पर बॉलीवुड के 90s एंड अर्ली 2000 के एरा के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स जो हमारी जिंदगी में प्रिंट हो चुके हैं, छप चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है। और ये जो डायलॉग जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र ही किया है और आपको गेस करने के लिए कहा था, वेल दैट डायलॉग इज जल्दी बोल पनवेल निकलना है। वेल, ये जो डायलॉग था जो ओरिजिनली फिल्म में वसूली भाई यानी कि मुकेश तिवारी ने कहा था, आपको पता है इस डायलॉग के पीछे भी एक बड़ी फनी कहानी है। हुआ ये था कि जब सेट पर शूट चल रहा था तो मुकेश तिवारी ने जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनसे पूछा कि उनका सीन कब लगने वाला है क्योंकि काफी डिले चल रहा था। तो वो बंदा जो है वो बार बार आके बताता कि सर अब, सर तब। फाइनली मुकेश तिवारी ने एक बात बोली कि यार जल्दी बता पनवेल निकलना है। एंड ही एक्चुअली मेंट इट बिकॉज उनको एक्चुअली पनवेल जाना था शूट कंप्लीट करके, तो वो चाह रहे थे कि भाई अपडेट मिले तो फिर मैं डिसाइड करूं कि पनवेल कितने बजे निकलना है। बस फिर क्या था, रोहित शेट्टी ओवरहर्ड द कॉन्वर्सेशन और उन्होंने मुकेश तिवारी को कहा कि बस सही है, बहुत सही है, ये डायलॉग अपन मूवी में रखते हैं। जाने रोहित शेट्टी को इस डायलॉग में क्या दिखा कि उन्हें समझ आ गया कि हम इंडियन ऑडियंस जो है वो पागल हो जाएगी इस डायलॉग को लेकर। एंड दिस डायलॉग वर्क्ड वंडर्स। इनफैक्ट वसूली भाई का जो कैरेक्टर है वो इस डायलॉग को लेकर और ज्यादा हिट हो गया कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। और अगर हमें भी कहीं लेट हो रहा होता है ना तो हम भी यही डायलॉग मार रहे होते हैं कि जल्दी बोल पनवेल निकलना है। आप बताओ, क्या आप भी इस डायलॉग का कई हद तक इस्तेमाल करते हो अपनी जिंदगी में? डीएम करके बता सकते हो मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिलेनियल्स की बात की जाए ना बॉस, तो हम हैं, बाकी पानी कम है, क्योंकि हम जो पिक्चरें देख देख कर बड़े हुए ना, उनके तो डायलॉग्स में भी दम है।
0: मिर्ची पे 90s की आंखों का तारा।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज मिड्डे मोहब्बत पर मैंने सोचा कि क्यों ना 90s और अर्ली 2000 की उन मूवीज के फेमस डायलॉग्स के बारे में बात की जाए जिन्होंने आग लगा दी थी तब भी और आज भी हमारी जिंदगी में। वो ऐसे काम आते हैं कि अगर किसी के साथ वाइब चेक करनी होती है ना, तो बस एक डायलॉग काफी है बॉस, समझ में आ जाता है कि अगला जो है वो वाइब चेक पास कर चुका कि नहीं। जैसे अभी देखो, आपके और मेरे साथ वाइब चेक कर लेती हूँ, कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। ये डायलॉग ऐसा डायलॉग है जो कि एक बार इस्तेमाल हुआ कुछ कुछ होता है मूवी के अंदर, लेकिन बार बार इस्तेमाल हुआ हमारी जिंदगी की मूवी के अंदर, सो मच सो दैट कि हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। और अगर कहीं किसी को कुछ बात समझानी होती है ना, तो बस ये डायलॉग बोल देते हैं। अगला अगर मिलेनियल है और वाइब चेक हो चुकी है, वो बिना आगे की एक्सप्लेनेशन के ना हमारी बात समझ जाएगा बॉस। लेकिन आपको पता है, करण जौहर ने ये डायलॉग अपनी पहली स्क्रीन प्ले में लिखा जब वो डायरेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, और उन्हें इस बात का डर था कि कुछ कुछ सुनकर लोग हंस पड़ेंगे। लेकिन SRK का जज्बा, SRK की डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने इस डायलॉग को ही आइकॉनिक बना दिया भाई। इस डायलॉग को शाहरुख खान ने बहुत ही कैजुअली लेकिन बड़ी ही गहराई के साथ बोला है। वो डिलीवरी इतनी नेचुरल लगी ना लोगों को कि लगा कि जैसे कि कोई रियल लाइफ लड़के ने अपनी फीलिंग्स एडमिट की हो किसी बंदी के सामने। बस फिर क्या था, तब से लेकर आज तक वी हैव फॉलन इन लव विद दिस डायलॉग। और हम 90s किड्स इस डायलॉग को क्रश को इम्प्रेस करने के लिए या फिर रिजेक्ट होने के बाद स्टेटस अपडेट देने का अनऑफिशियल तरीका बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज इफ सामने वाला इंसान या तो टीना है या फिर अंजलि है। अब मैं नहीं बोल सकती कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि आप मेरी बात समझ चुके हो। कमिंग अप मोर सच डायलॉग्स ऑन मिड्डे मोहब्बत टुडे, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: आज वीसीआर पर मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें हीरोइन का नाम दया शंकर था और हीरो का नाम उमा पार्वती।
1: मिर्ची वीसीआर।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा और राम गोपाल वर्मा की दौड़। देखो, दौड़ अपने टाइम में दौड़ी तो डेफिनेटली नहीं, बट बेचारी चली भी नहीं। उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त स्टारर ये मूवी लोगों को भले ही उस टाइम पर नहीं समझ में आई हो, लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। लाइक चाकू की एंट्री वाला सीन आपको याद है? वो सीन मुझे बहुत ही हिलेरियस लगा था। एंड बाय द वे, आपने मूवी के म्यूजिक में दौड़ को दऊद सुना होगा? Well, that was actually a mispronunciation by Rehman साहब, जिसे लोगों को ये लगा था कि ये मूवी जो है it's about the Don दाऊद इब्राहिम। ये मूवी तो दाऊद पर नहीं थी, लेकिन इस मूवी से राम गोपाल वर्मा को अपनी सत्या के लिए एक डॉन जरूर मिल गया था। कौन था वो बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रामगोपाल वर्मा मनोज बाजपेयी को दौड़ में कास्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए नहीं कि उनका काम अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इसीलिए कि उनका काम इतना अच्छा लगा कि दौड़ का छोटू मोटू सा रोल देने के लिए उन्हें लगा कि यार ये ऐप नहीं है, इन्हें तो भीखू मात्रे का रोल देना चाहिए। मिर्ची चैट रूम। हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और मनोज बाजपेयी जब दौड़ के विलेन के छोटे से रोल के लिए रामगोपाल वर्मा से मिले थे, तो आरजीबी वाज शॉक टू नो कि मनोज इज द सेम गाय फ्रॉम बैंडेड क्वीन। और उन्होंने मनोज को कहा कि वो यार इतना छोटा रोल डिजर्व नहीं करते हैं, एंड देयर आर बेटर थिंग्स लाइंड अप फॉर हिम लाइक भीखू मात्रे इन सत्या। लेकिन फिर भी मनोज वांटेड टू डू दिस छोटू सा रोल बिकॉज उनके स्ट्रगल के दिन चल रहे थे एंड ही नीडेड द मनी। और यूं मनोज बाजपेयी दौड़ और सत्या का हिस्सा बने। हालात उस टाइम पर ऐसे थे कि बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान भी हानिकारक था उनके लिए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्कुल बेसिक से सेटअप वाले ये डांस रियलिटी शो ने अपने टाइम में कितनी आग लगाई थी यार।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And the show that I'm talking about is A dance reality show, जो जब आया था तब उस दौर में जजेस का रोना, टीआरपी के लिए पर्सनल लाइफ को धोना कुछ नहीं हुआ करता था। होता था तो सिर्फ एक ऑनेस्ट कॉन्टेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मर यूज्ड टू विन। इस शो को याद कर रही हूँ तो यूँ लग रहा है कि यार लाइफ यूज्ड टू बी सो सिंपल इन दोज डेज। नावेद, जावेद और रवि जो कि इस शो के कर्ता धर्ता और जजेस थे, दे यूज्ड टू क्रैक द ऑडियंसेस विद देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आई फील दे वर द मोस्ट ऑनेस्ट एंड नॉन स्क्रिप्टेड जजेस टिल नाउ। व्हाट डू यू से? बूगी बूगी अगर आज वापस आए तो कौन जजेस हो और किस तरह से वापस आए? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए अगला गाना आ रहा है, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Basta, what is that?
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। Well, there used to be a time जब vocabulary भी छोटी होती थी और type of bags की choice भी। क्या आपने कभी बैग को बस्ता बोला है? देखो यार, हमें तो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिट करवाया गया था, तो आई कुडंट यूज दिस वर्ड, लेकिन मेरे घर के काफी सारे बड़े यूज टू यूज दिस वर्ड। इनफैक्ट हमारे ऑटो वाले जो भैया थे वो भी बैग को बस्ता ही कहा करते थे, और मेरी ट्यूशन टीचर वो भी हमारे बैग को बस्ता कहा करती थी कि बेटा बस्ता ले लिया, बेटा बस्ते में अपनी बुक्स और पेंसिल्स रख ली। लेकिन ये जो बस्ता था ना, ये बस्ता ही लगता था यार, रेक्टेंगुलर शेप बैग जिसके दो बकल्स होते थे, या वो मेटल वाले बटन्स, सबसे बाहर दो पॉकेट्स होती थी, देन अंदर किताबें रखने की जगह, एंड दैट्स इट। नो टू मेनी जिप्स एंड पॉकेट्स टू कंफ्यूज अस, जिससे कि हम कभी अपने रबर और पेंसिल ढूंढते ढूंढते पगलाए नहीं, अंटिल वी हैड अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स टू चूज फ्रॉम, अ स्लिंग बैग, अ टोट बैग, अ शोल्डर बैग एंड व्हाट नॉट। एंड यू नो व्हाट, इन सब में हम लड़कियों को काफी मेहनत के बाद एक रबर बैंड या एक छोटी सी लिपस्टिक मिल पाती है। Doesn't matter how big or small the bag is, लेकिन सामान ढूंढना हमेशा ही मुश्किल होता है। लेकिन आपको पता है, ये जो बस्ता था ना, ये लड़के का हो या लड़की का हो, एक चीज इनमें कॉमन जरूर हुआ करती थी, और वो थी टिफिन से बहते हुए सब्जी और अचार के तेल के दाग, जिसकी स्मेल मैं आज भी बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
1: चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे,

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर तकियों की दीवारों से बने घर,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज पता है, खुद का घर बनाने की एक अलग ही जंग लड़ रहा है जमाना। वो जमाना जो कभी तुम से एक घर बनाकर खुश था। तुम्हारी दीवारें ईंट पत्थर की और खून पसीने की नहीं थी, पर सुकून और वार्मथ की जरूर थी। उनमें लाइट नहीं थी, लेकिन वो हमारी मुस्कान से जगमगाता था। साउंड सिस्टम नहीं था, लेकिन हमारी हंसी से खिलखिलाता था। हमारी इमेजिनेशन कितनी गजब थी यार, कि तुम्हें बनाकर हम सोचा करते थे कि हमने फेरी टेल से निकला कोई बड़ा सा कासल बना दिया। और आज इंटीरियर डिजाइनिंग की मैगजीन से इंस्पायर्ड घर भी सेट कर देना तो भी तसल्ली नहीं होती कि नहीं नहीं नहीं यार, परफेक्ट नहीं है। अच्छा है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। कितने संतुष्ट थे ना हम, तुम्हें बनाते, कहानियां बनाते और खुश रहते। यू नो, तकियों की दीवारों वाले घर, तुमने हमें एक बात नहीं बताई, और अगर बोल पाते ना तो जरूर बताते कि घर परफेक्ट नहीं, थोड़ा तहस नहस ही अच्छा लगता है। घर वही घर लगता है जहाँ थोड़ी कमी हो, तभी तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है बिकम्स अ परफेक्ट फैमिली सॉन्ग। नहीं क्या? तुम्हारी यादों में सुकून पाती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: प्रसून जोशी ने जो लिख दिया सो लिख दिया, नरेश अय्यर ने जो गा दिया सो गा दिया, और रहमान सर ने जो म्यूजिक बना दिया सो बना दिया, और यूं आया कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
1: मिर्ची 90s कैसेट।
2: इस गाने ने सिर्फ फिल्म ही नहीं, हम में भी एज यंग भारत जान डाल दी थी। इस गाने को सुनकर ना आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड आई फील कि जब कभी आपको ये लगे ना कि आप सिचुएशन से हार रहे हो एंड इट्स टाइम टू गिव अप, इस गाने को सुनना, असर होगा, क्योंकि इस गाने की ये लाइंस बड़ी इन्फ्लुएंशियल लगती है मुझे।

एंड यस, जब तक अपने अंदर के अंधेरे में झांक कर ये नहीं बोलेंगे ना, तो रोशनी कहाँ से आएगी। जब ये गाना हम मिलेनियल किड्स को तब जोश से भर सकता था जब हम अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कर रहे थे, तो आज क्यों नहीं। बदला कुछ नहीं है बॉस, बस अब हमें खुद को मुझसे नहीं होगा बोलने की आदत हो गई है। लेकिन ये भी जान लो, ऐसी आदतों से जितनी जल्दी निजात पाएंगे ना, उतना ही जल्दी आगे जा पाएंगे। एंड नाउ विद दिस इट्स टाइम फॉर मी टू से कि हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। यहाँ के अलावा आप मुझे ढूंढ सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: अकड़ी बकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिका दिकड़ी दिक्क दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
2: दिकीरो दिकीरो दिकीरो।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा कोरी भाई, बजा।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कन्हैया लाल की।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more remix.

मेरा इस बात का है बस कि कहीं ना ये रात निकल जाए, मेरी इतनी भी पास दुआ मत कहीं मेरे हाथों से न बात निकल जाए। बोलूंगा सच में जो दे तू इजाजत, सबर भी अब करने लगा बगावत, सुल्फे हैं जालिम और आंखें हैं आफत, लगता है होने वाली है कयामत। मत तड़पा ऐसे तू, न करना इंसाफी, जो गलती करने वाला हूँ मैं उसके लिए पहले से ही मांगता हूँ माफी।

0: Mirchi, it's hot.
1: तेरी मम्मी की जय

चिको हाय पसीना शक्ल है इंडियन बॉडी लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यू तो किया बर्बाद है तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.